0: खिचलाए ऊपर खाली आए ऊपर खाली आए ऊपर खाली आए
1: जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिगन ना होए राम राज जिन सतगुर पुरख

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चेहन अर वर्ण जात अर पात नहिन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत किह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नार असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख त्याए वरदाता संत सहार सदा विखयाता तास चरण ले हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई डिठे सबे थाव नहीं तुद जे हया बद्ध हो पुरख विधाता ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाय रामदास सार अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु।

दास मह सोए जह देखा तह आवर ना कोय सहज मिला मिलया परवाना नात स्मरण न आवण जाना ठाकुर मह दास दास मह सोए जह देखा तह आवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाइया बिन गुर पेटे मार आइया जाइया रहा सो गुर करो जे साच दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन मह मनुआ मन मह साचा सो साचा मेल साचे राचा सेवक प्रभ का लग पाए सतगुर पूरा मिला मिलाए आप दिखावा आपे देखा हाथ ना पतीजा ना बहु पेखा काड़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पढ़ पढ़ भूल है चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिलां तीर्थ बनवासा परमत डोलत भए उदासा मन मैला सूचा क्यों होए साच मिला पावे पत सोए आचारा

दे सहज मन तीर पाल पंकज मह पाल पंकज मह कोट उधारे कर कृपा गोर मेल प्यारे किस आगा प्रभ तुद सलाही

0: सब किच तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर सजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवसरा दुदाई दया खेलै सगल जगत चंगिया या बुरे आई।

माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै।

0: जिन की थी सो पार पया, कहो नान करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहा।
1: सो दर

शरण परे की रखो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की अच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम हे शाड कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूधियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आपे अपनी भूज उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भीव न पावत भेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अवार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।
पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तै है, ताके काल निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे निहर हो, ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सके न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक नाम अन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गहियो तुहारो

0: कि तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी

तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा

अपने सुख से ही जग फंदियो, को काहू को नाही। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख से ही जग फंदियो, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस के रह। विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना

जब ही हंस तजिय काया प्रेत प्रेत कर भागे एह विद को व्यवहार बनयो है जासे उन्हें हो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम न आयो एह बिद को व्यवहार बनयो है जासे उन्हें हो लगायो।

तेते अवगुण हमार। दया करो किश मेहर अपावो, डूब दे पत्थर तारे। जीड़ा अगन बराबर तपे, पितर वगै का

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक।

0: हर भगत पंडारा, भगत पंडारा।
1: श्लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार।

0: सेव गवाइए, सेव गवाइए, सेव गवाइए।
1: थोड़ी दौड़ मिंड अतली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िया एक माल लगते आइए, फल ते वेह पाइए जे वे कर कमाइए, जे हो वे पूर्व लिखिया ता तोड़ ते ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

थोड़ी तुर कर्म जना को तुद पाया ता तिनी कसम ते आया ना जनता के बस के छना तुद वे की जग तू पाया एक नानो तू मेला एक आप तुद खुवाया गुर कृपा ते जानिया जिते तुद आग बुझाया सहज ही सत समाया सहज ही सत समाया।

0: जो कुछ करना सो कर हम हला दूजा।
1: जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सुई निरंजन देव महला दूजा।
0: हे कृष्णन सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस दिवस जे

नानक तिस बलिहारे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा हार बिसरत सदा खुआरी ताकाओ धोखा कहा ब्यापै जाकाओ ओट।

श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे सबको सच समावे रिग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लिया प्रश जय नानक तो मखन त्रिपाए जुज मैं जो छली चंद्रावल कान किसन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन मह रंग किया काल में बेद थरबन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्तले कपड़े पहरे

0: फल फिके फल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवे नानका गुण चंगाइया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना को दर्द रज तो लिए निवे सुगौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जर देख सुदे जाय महला पहला
1: पाड़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज भगत समाद मुख झूठ भी भुखंग सारं त्रै पाल ते हाल बिचारं गल माला तिरक लला टंग दे धोती बस कपाटं जी जानस ब्रह्मं करमं सफो कट नेचो करमं कौ नानक नेचो ध्यावे विन सतगुर वाट।

0: दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट हिजने उजे काही ता भांडे कत नाहे तुटे ना मल लगे नाहे दले ना जाए तन सुमानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पे नामिया राधन जिना तग पहु करती है बामन वटे आए कोई बकरा रिण खाया सबको आखे पाए।